0: दिया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। श्री मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटना के बाद से ढाई महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया और वे जेल में बंद हैं।
1: गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: नीट पेपर लीक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने की बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक

0: सुन रहे हैं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना झील में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टरों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुलिसकर्मी और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोबाइल पानी में गिर जाने के बाद उसे निकालने के क्रम में यह हादसा हुआ। दोनों डॉक्टरों के शवों को झील से बाहर निकाल लिया गया है।
1: इतना स्लिपरी है ना कि यहाँ कोई खड़ा होगा तो स्लिपरी करके तू नीचे जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। तो वो प्रेस करता करता करता करता करते नीचे गए। पहले एक मिला तो फिर हम उसको ले आए। पहले हम सोचे कि दोनों को एक साथ ले आएंगे, हम दूसरा मिल नहीं रहा, पहले उसको ले आते। फिर दोबारा 10 फीट के गैप में फिर नीचे गए जाते थे, फिर वो दूसरा भी मिला।
0: मस्कट में चल रही यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला अंडर 18 टीम ने कजाकिस्तान को 10-0 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। झारखंड की संदीपा कुमारी ने हैट्रिक सहित 3 गोल किए और लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। भारतीय टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, नीलम टुपनो, श्रुति कुमारी और खिल्ली कुमारी शामिल हैं। लगातार 4 जीत के साथ भारतीय टीम अब नॉकआउट चरण और FIH यूथ हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। 50 लाख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया फुटओवर ब्रिज और सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 29 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं एनसीईआरटी।

0: मुकदमा
1: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
0: जीवन के दुख हमें सुधरने

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।
4: तो इंतजार किस बात का है, इन नन्ही खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्ही खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियाँ हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
5: हेलो सहेली,
4: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
5: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
4: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय, जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
5: जी
4: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं, क्या करती हैं?
5: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा लिख लेती हूँ।
4: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
5: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी की मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा तो लेख लिख देते हैं।
4: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
5: हाँ होते हैं ना, होते हैं ना चंचल जी।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल।
4: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
5: लेखन की प्रेरणा मिली कुछ बातें कुछ गीत से।
4: अच्छा।
5: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला, सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
4: ये बड़ी अच्छी बात,
5: हिचक खुलती गई थी।
4: सृष्टि, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
5: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
4: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है, अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: और कोई शौक आपके?
5: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं।
4: ये बिल्कुल सही बात है।
5: किताबें अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक है।
4: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
5: जी जी जी जी जी जी।
4: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
5: लिख नहीं सकते आप।
4: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
5: जी जी जी।
4: सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
5: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
4: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी। दीदी,
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: जिला सागर है, मध्य प्रदेश, ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी, कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में? यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन,
0: जी
1: 5वीं तक हमने यही सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी,
1: जी दीदी
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही है, उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है। जी
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: दीदी
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?

0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियाँ बांटता है।
1: जी दीदी
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज
1: जी
0: आप
1: दीदी
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
1: जी
0: इसमें क्या मेरी खता है।
1: जी
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाएं तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है
0: बिल्कुल।
1: ना, और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा।

0: गया है।
1: और मनीषा जी अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
0: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
1: क्या बात है।
0: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
1: अच्छा,
0: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
1: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
0: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
1: बहुत
0: इतनी सी
1: बहुत
0: याद।
1: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?

0: हाँ बिल्कुल, 4 बजे घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा हुआ था, मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई, मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
1: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
1: जी आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप
1: आपका,
0: क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात कर रही हैं, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना,
0: हाँ
1: जूही
0: जी,
1: का
0: जूही का फूल
1: वो।
0: बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए हुए थे। उस जमाने में MBA करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण रखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, जैसे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं।

0: जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
1: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
1: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
0: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ।
1: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
0: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
1: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है? और आपको ये शौक कैसे लगा, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है। वो बहुत अच्छी अदाकारा रही, उनके यहाँ से ये मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनू, म्यूजिक गाऊं। मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी, और यूँ कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा। रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेती हो, वही सीखा है। मैं क्या कहूँ वो कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
1: अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
0: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
1: तो
0: वो
1: बताइए,
0: गाना
1: आपकी पसंद
0: है
1: कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
0: महल फिल्म का गाना है।

0: सफर जबती है।
1: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
0: जलंधर सिटी।
1: मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
0: मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: तो पूरा दिन आपका
0: हाँ,
1: किस तरह गुजरता है?
0: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ,
1: ऐसे
0: चले
1: कौन से
0: जाते
1: काम
0: हैं।
1: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
0: सर मैम, खाना बनाना।
1: खाना बनाना ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देता है?
0: हाँ जी मैम।
1: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
0: मैडम खीर।
1: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
0: हाँ जी मैम।
1: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मन फिल्म का मैम,
1: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
0: मेरा मन क्या तुम्हें चाहे, मेरा मन, यही मैम।
1: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। मैम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता
0: तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी।
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है जी।
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के, सूजी
0: टुकड़े, किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं,
0: अच्छा,
1: सूजी को भून कर। जी
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं।
1: जी आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं
1: जी मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना

0: बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहती हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा, बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का, और
0: किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ।
0: आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती, वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती
1: वो,
0: हैं।
1: हाँ मैडम,
0: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा,
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद
1: हाँ
0: में और कौन से
1: वैसे
0: कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले, उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है,
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: इसीलिए
0: हैं?
1: हम दोनों ही है।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ
0: तो
1: हम
0: आज आप,
1: दोनों ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ, और वो नहीं, वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली, वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंदगी
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से, तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी,
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग-अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी,
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये
1: बिल्कुल,
0: अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाए।

0: का चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे।
1: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है, वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए। क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें। इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: पांच कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है।

0: सपनों की नगरी मुंबई। यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन
1: लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा आज राजधानी उप राजधानी दुमका में संथाल परगना प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था तथा श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रही हैं। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी तथा संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई पर चर्चा हो रही है। और गढ़वा जिले के नगर उटारी भवनाथपुर मार्ग पर कल दो बाइक की टक्कर में घायल तीनों युवकों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: देखते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसके आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

बहुत सकारात्मक ही नजर आता है, क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ ठोकरे खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था, क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज, हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची, तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आज आकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म थी जहाँ हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहाँ देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे?

0: तीन चार
1: बस। और बीती रात?
0: नहीं सो पाई।
1: क्यों, कुछ परेशानी है?
0: सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा,
1: मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है।
0: नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए।
1: सुधा बेचैन सी उठी।
0: मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े।
1: रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे।
0: नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा।
1: जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची, तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊँ, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा? क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है, रमेश ने पूछा, तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी, तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ। रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा

रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है, आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार हैं। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति तथा चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में अवैध मदिरा निर्माण भंडारण और तस्करी पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को वाराणसी से दीपोत्सव कलश पूजन और समरसता संगोष्ठी के साथ होगी। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी पंचायत के नंतिलो झखरा टोली में धान रोपाई के लिए सिंचाई करने को लेकर बिजली तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। और बोकारो जिले में स्थित तेनुघाट डैम के 3 रेडियल गेट और 1 अंडरसुलिस गेट खोल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डैम में पानी रखने की क्षमता 852 फीट है, जबकि वर्तमान में डैम में 850.05 फीट पानी है। खतरे के निशान के करीब होने के कारण एहतियातन तीनों गेट खोले गए हैं। और इसके साथ ही

0: अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बंद कलियों में हो जैसे फूलों का इंतखाब।

बसी। इतना भी न आइए कि सितारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोचकर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आंखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।

दिल धड़कता है, दो घड़ी तो बैठ जाइए, न जाइए दूर कि जी घबराता है। दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे, कुछ आपने भी छुपाया है, कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने, कहिए कि न कहिए। जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

शोलों से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग हुस्न से आ रही है रोशनी थम थम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई, कुछ टूट कर लबों को भिगो गई। संदली रात में बारिशों का रंग चढ़ता गया, लम्हा लम्हा उनके रुखसार का रंग गुलाबी होता गया।

काश ये रात थम जाए, बादलों से बूंदों का आशियां लरस जाए, इश्क हुस्न के दरमियां न रहे आज कोई फासला, पर्वतों से टूट के देखो काली घटा बरसती है, न पूछिए हमसे कि बारिशों से भी आग बरसती है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं।

नमस्कार श्रोताओं, मैं अधिवक्ता सुप्रिया रंजन, जिला पलामू, सत्र न्यायालय डाल्टनगंज से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे वकील के रूप में प्रैक्टिस करती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों से जुड़ी कानूनी मामलों पर कार्य कर रही हूँ। आज आकाशवाणी दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम कानूनी जागरूकता जाने महिलाओं से संबंधित कानून में मैं आप सभी को आपके अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों और न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी दूंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम हर नागरिक, विशेषकर महिलाओं, अपने अधिकारों को समझें, कानूनी सहायता का सही उपयोग करें और उसके अन्याय के विरुद्ध आत्मविश्वास के साथ आगे देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज मैं आप सभी के सामने महिलाओं से संबंधित कानूनी जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हमारा संविधान हर महिला को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर भी आज कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होने के कारण अन्याय और शोषण का शिकार बन जाती हैं। बहनों, महिलाएं समाज की आधारशिला हैं। एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में वे परिवार और समाज को मजबूत बनाती हैं। ऐसे में कानूनी जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध के खिलाफ हमारे देश में सख्त कानून बने हुए हैं। अगर कोई महिला हिंसा का शिकार होती हैं तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं और न्यायालय की शरण ले सकती हैं। एक समय था जब महिलाओं की आवाज़ घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज की नारी अब सिर्फ सहन नहीं करती है बल्कि अपने अधिकारों को पहचानती है और उनके लिए खड़ी रहती है। परंतु यह शक्ति तभी आती है जब हमें अपने कानूनों की जानकारी होती है। आज बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए अन्याय सहती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहनों, मुझे आपसे पूछना है कि अगर आप चुप रहेंगी तो न्याय कौन मांगेगा? सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कई सुरक्षा कानून बनाए हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक हमें इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक ये कानून सिर्फ कागजों में

बने रह जाएंगे। बहनों, हम सब मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, परिवार को जोड़ कर रखती हैं, लेकिन कई बार हमारे समाज में हमारे साथ गलत होता रहता है। कभी घर में मारपीट, कभी दहेज की मांग, कभी गाली गलौज, कभी जमीन या संपत्ति में हिस्सा न देना, कभी बाहर किसी का छेड़ना या साइबर क्राइम द्वारा परेशान करना। याद रखिए, यह सब अपराध है और इसके खिलाफ हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। हमारे संविधान ने हमें कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, शिक्षा और रोजगार का अधिकार। अगर किसी महिला को उसके घर में मारा पीटा जाए, तंग किया जाए, तो वो 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, 112 पुलिस नंबर या नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कानून कहता है दहेज मांगना अपराध है, घरेलू हिंसा अपराध है, किसी महिला को सड़क या खेत में छेड़ना अपराध है, मोबाइल पर धोखा देना अपराध है, मोबाइल पर किसी का वीडियो गलत तरीके से वायरल करना अपराध है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधवा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना। अर्थात मैं यह कहना चाहूँगी, जागरूक महिला ही सशक्त महिला है और सशक्त महिला ही परिवार और समाज को बदल सकती हैं। श्रोताओं, मैं आपको आज कानूनी तरीके को कैसे अपने जीवन में अमल लाएं और उसके क्या क्या तरीका है ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की। घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, भावनात्मक अत्याचार और सामाजिक अपमान, इन सभी को अपराध की श्रेणी में ही माना जाता है। इस कानून के तहत महिला को पति या ससुराल से होने वाले हिंसा को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। महिला को उसके घर में रहने का अधिकार दिया जाता है, जिसे रेसिडेंस ऑर्डर कहते हैं। महिला और बच्चों के लिए खर्च के लिए प्रावधान है, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं। काउंसिलिंग और शेल्टर होम की भी सुविधा है। यदि किसी महिला को घर में किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़े, तो वह महिला हेल्पलाइन 181 में कॉल कर सकती हैं, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहती हैं सूचना को गुप्त रखकर आपके काम को आगे बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे ये भी होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आपसे तुरंत संपर्क करते हैं, थाना में भी आप कॉल कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करके उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। दूसरा बड़ा कानून है दहेज निषेध अधिनियम। भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही एक गंभीर अपराध है। अगर किसी महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाए, शादी टूटने की धमकी दी जाए, तो वह कानून का मदद ले सकती है। इस कानून में कैद, भारी जुर्माना और दहेज की वस्तुओं का वापस मिलना सब शामिल होता है। महिला को यह जानना चाहिए कि दहेज मांगना शुरू से ही अपराध है, चाहे वह शादी में हो या शादी के बाद हो। 498A IPC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पति या ससुराल द्वारा क्रूरता के अंतर्गत इस सेक्शन में काम होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसमें महिला को मारपीट, दहेज की मांग, मानसिक उत्पीड़न या आत्महत्या के लिए मजबूर करना, इसके अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत आप FIR दर्ज करा सकती हैं। यह कठोर दंडनीय अपराध है, जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पॉश एक्ट, ये 2013 में आया है। महिलाएं अक्सर गांव में या शहर में अपने घर की जीविका चलाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, दो चार पैसे कमाती हैं, ताकि उनके घर को, उनके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। मगर जब कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ही होने लगे, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें होने लगे, गंदे इशारे करने लगे वहाँ के अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी, इशारों भरी बातें करने लगे, उनके गंदी संदी फोटो भेजने लगे, तो वहाँ का माहौल असुरक्षित हो जाता है। इन सभी की शिकायत के लिए महिला को शिकायत दर्ज करना चाहिए, जो 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। और शिकायत मिलने पर संस्था को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होती है। इसके लिए हर कंपनी या समिति के लिए ICC एक आंतरिक शिकायत समिति होना अनिवार्य है। आजकल महिलाएं जब काम करती हैं, तो अगर उनकी प्रेगनेंसी की पीरियड है, अगर वो गर्भाधान की है या फिर उनका बच्चा होने वाला है, तो उस टाइम भी उनको सही न्याय दिलाने के लिए या उनके कार्य व्यवस्था को आसानी करने के लिए उनको अधिकार सुनिश्चित करती है। इसमें हमारा ये कानून कहता है कि 26 सप्ताह का वेतन, अगर आप काम नहीं कर रही हैं तब भी आपको अवकाश के समय लेने का अधिकार है, और उस समय आपको उसका पैसा भी मिलेगा। आपको चिकित्सकीय सहायता मिलेगी, नौकरी से नहीं निकालने की सुरक्षा मिलेगी।

0: सभी को अपनी पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। हमारे कानून में हर जगह कोर्ट है और कोर्ट के अंदर एक डालसा DLS से मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है जो नेशनल लेवल पर नालसा का रूप ले लेती है। अगर किसी महिला के पास वकील करने की आर्थिक क्षमता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLS से उसे मुफ्त वकील उपलब्ध कराता है। जिला न्यायालय परिसर में ही डालसा का कार्यालय होता है। यहाँ पे जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आपसे पैसे नहीं लिए जाएगा, ये निःशुल्क सहायता होता है और हर महिला को यह सहायता पाने का अधिकार है। आज के टाइम में साइबर अपराध वो जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज के टाइम में हर इंसान के पास फोन है और फोन से वो कई लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं मगर ये जान नहीं पाते हैं कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है, वो क्या चाह रहा है। आपके कुछ फोटोज लेगा, उसे नेट के थ्रू वायरल करेगा, उसको गंदे संदे मैसेज के साथ सेट करेगा और उसे वायरल करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे उससे पैसे की डिमांड करेंगे या फिर आप स्टॉक करेंगे। तो इस टाइप के साइबर अपराध के लिए महिलाएं साइबर सेल में जा सकती हैं। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और भी बहुत सारे कानून हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अपने
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान विषय पर सुप्रिया रंजन की वार्ता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से मुख्य प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति और चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब निर्माण, भंडारण और तस्करी पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच प्रभावित करने की आशंका जताते हुए जमाल अहमद को जल्द पदमुक्त करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रामगढ़ जिले को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह पुरस्कार डॉ. विश्वनाथ राव और गोला की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपराजित ने प्राप्त किया। जिले के उपायुक्त ऋतु राज ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण देखभाल सरकारी योजनाओं से उनको लाभान्वित

0: मिला है। और गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, हमेशा की तरह आपके साथ हैं आज आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष जी, और सभी किसान भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार।
0: और अब हम लोग बातें करते हैं खेती बाड़ी की। आज कार्यक्रम खेती बाड़ी में सर्वप्रथम हम लोग बातें करते हैं ड्रिप सिंचाई की, फव्वारा सिंचाई पद्धति की, चूँकि अब हमारे किसान भाई गर्मी को झेलेंगे,
1: क्योंकि जलस्तर नीचे जाना प्रारंभ हो चुका है, गर्मी भी अपने रंग में आने लगी है। तो उस स्थिति में चूंकि हमारा जो पलामू प्रमंडल है खासकर, और इसमें यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, तो जब यहाँ पानी पीने की जब समस्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि जलस्तर तो नीचे जाता ही है, तो सिंचाई करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। तो जो हमारी जो पद्धति है, जो ईजाद की गई कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, ड्रिप कहें या फवारा सिंचाई पद्धति, यह जो ड्रिप सिंचाई जो सिंचाई है, यह उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मृदा के प्रकार, खेत के ढाल, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों के लिए अपनाई जा सकती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है संतोष जी, वो यही है, ड्रिप विधि का सिंचाई दक्षता लगभग 80-90% होती है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की उच्च गुणवत्ता, रसायन व उर्वरकों का दक्ष उपयोग, जल के विलक्षण एवं अप्रवाह में कमी, खरपतवारों में कमी और जल की बचत सुनिश्चित की जा सकती है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, और सबसे बड़ी बात हम आपको यह भी बताते चलें कि सिंचाई की इस विधि का उपयोग पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। सीमित जल संसाधनों और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जल की आवश्यकता और पर्यावरण की समस्या को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक निसंदेह बहुत कारगर सिद्ध होगी। और जिन क्षेत्रों में भूमि को समतल करना महंगा या कठिन हो चुका है, जो असंभव मान लीजिए, उन क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त भी है।
1: ड्रिप तंत्र एक अधिक आवृत्ति वाला ऐसा सिंचाई यंत्र है जिसमें जल को पौधों के मूल क्षेत्र के आसपास दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधे को आवश्यकता अनुसार जल दिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा 30-40% तक उर्वरकों की भी बचत की जा सकती है। 70% तक जल की बचत के साथ उपज में 100% तक वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त खरपतवारों में काफ़ी कमी, कीट व्याधियों के प्रकोप में कमी, कम ऊर्जा की खपत और उत्पाद की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो।
0: किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई तंत्र एक उत्सर्जन युक्त सहित पाइपों का एक जाल होता है। ड्रिप तंत्र में मुख्य, उपमुख्य तथा लेटरल पाइप होते हैं, और लेटरल छोटे प्लास्टिक पाइप होते हैं जिनके साथ ड्रिपर लगे होते हैं। लेटरल पाइप को एक स्वीकार्य स्तर तक समान जल वितरण के लिए बिछाया जाता है। उपमुख्य पाइप एक नियंत्रण तंत्र की भांति कार्य करता है और जल के दबाव को समायोजित करता है किसान भाइयों, जिससे कि प्रत्येक लेटरल में जल का आवश्यक प्रवाह

0: हो सके। तो इस प्रकार तो अगर देखा जाए तो बहुत फायदे हमें नजर आते हैं आपको ड्रिप सिंचाई में, जिसकी आवश्यकता आज हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है किसान भाइयों, और अब है कि हम इसका अच्छी तरह से उपयोग करें।
1: देखिए, ड्रिप जो सिंचाई है संतोष जी, यह कृषि वैज्ञानिकों का एक तरह से हम कहेंगे किसानों के लिए जो इजाद की गई है, एक वरदान से कम नहीं है। और इसके लाभ भी कई सारे हैं, यही नहीं कि सिर्फ पानी की ही बचत करते, इसके लाभ भी कई सारे हैं। जैसे उत्पादकता और गुणवत्ता की अगर बात हम लोग करते हैं, तो जो टपक सिंचाई है, जो ड्रिप सिंचाई है, इसमें पेड़ पौधों को प्रतिदिन जरूरी मात्रा में पानी मिलता है। तो सिंचाई कर रहे थे, एक बार आपने सिंचाई कर दी, पूरे खेत को पटा दिया, उसके बाद फिर सिंचाई मिल नहीं पाती है। तो इसमें है कि आपको प्रतिदिन आप इसमें जब जब जिस फसल को जितनी आवश्यकता पानी की हो, उतनी आवश्यकता एकदम जिसे नहीं होता नाप तोल करके मिल जाना, इतना आहार जितना आवश्यकता है, जितनी भी उसको जरूरत है, उतनी आप सिंचाई उसको दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसमें जिस तरह से उसको चाहिए उसी तरह से आप उसको देते हैं
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है। और इसके जिस इस पद्धति में है कि फसलों की बढ़ोतरी व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20% से लेकर 50% तक बढ़ोतरी संभव है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, टपक सिंचाई द्वारा 30-60% तक सिंचाई पानी की आप बचत कर सकते हैं। उबड़ खाबड़ क्षारयुक्त बंजर जमीन, शुष्क खेती वाली और पानी के कम रिसाव वाली जमीन, और अल्प वर्षा की क्षारयुक्त जमीन और समुद्र तटीय जमीन की खेती के लिए ये उपयोग में लाई जा सकती है।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो वैसी जमीन जिसमें सिंचाई करना भी कठिन है, वैसी भी जमीन में आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और इसमें जब बात हम लोग करें रासायनिक खाद के बारे में, तो फर्टिगेशन से पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुँचाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पोषक तत्वों का उपयुक्त इस्तेमाल कर पाते हैं तथा प्रयोग किए गए उर्वरकों में होने वाले विभिन्न नुकसान कम होते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। इस पद्धति के द्वारा 30-45% तक की रासायनिक खाद की बचत भी की जाती है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, टपक सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है। आसपास की जमीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार से भी आप बच जाते हैं, और इससे जमीन के सभी पौष्टिक तत्व केवल फसल को मिलते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यही है इस में कि आपको सीधे जड़ को पानी मिलता है, आसपास को पानी नहीं मिलता है, इसलिए खरपतवार नहीं के बराबर हो पाते हैं। और फसल में कीट और रोग का जो प्रभाव होता है इस सिंचाई पद्धति के उपयोग के कारण, जड़ के क्षेत्र को छोड़कर बाकी भाग सूखा रहने से निराई गुड़ाई खुदाई कटाई आदि का काम भी बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं, जिससे मजदूरी समय और पैसे की भी बचत होती है।
0: जी किसान भाइयों, प्रतिदिन फसल को पानी देने से पहले पंप चालू करके 5 मिनट तक बैकवाश करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों, इसलिए कि संयंत्र को आप पटवन से पहले उसे आप जरूर चेक कर लें।
1: उससे क्या होता है कि सामान्य प्रवाह जो है वह उल्टी दिशा में ऊंचे दबाव से पानी छोड़े जाने की यह पद्धति है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि पहले दिन सैंड फिल्टर में कहीं किसी तरह की गंदगी अगर जमा होती है तो वह पानी के साथ बाहर आ जाती है और उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। और फिल्टर की सफाई होने के बाद हेडर असेंबली के बाईपास वाल्व की सहायता से उचित दाब नियंत्रित किया जाता है और उपयुक्त दबाव पर चलने वाले संयंत्र से पानी सभी जगह समान मात्रा में मिलता है। इसकी यही खासियत है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई पद्धति चालू करने के बाद सारे खेत में चक्कर लगाकर यह अच्छी तरह आप देख लें कि सभी ड्रिपर्स चालू हैं अथवा नहीं, और पानी का दबाव ठीक है कि नहीं, जमीन में नमी का प्रमाण अनुकूल है कि नहीं, किसी लेटरल में से पानी टपक तो नहीं रहा है। इन छोटी छोटी तमाम बातों की जांच इसलिए जरूरी है कि समस्या का निवारण तुरंत संभव हो सके।
1: और जो टपक संयंत्र के सभी ट्रिपर्स को पानी ठीक तरह से गिरता है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जमीन का गीलापन सभी जगह एक जैसा है नहीं, यह भी देखना चाहिए। सही जगह लगा है कि नहीं, यह भी देखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ जो लैटरल इनलाइन का अंतिम छोर खोलकर पानी को 1-2 मिनट यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो यह जो हमारी जो
0: पद्धति
1: है, जो फवारा तकनीक जिसे कहते हैं हम लोग, या टपक सिंचाई कहते हैं, इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं, कह सकते हैं। तो किसानों के लिए पानी के बचत के साथ साथ उनके उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और उनके जो उत्पाद हैं वह गुणवत्तापूर्ण होते हैं, यही इसकी खासियत
0: जी। तो किसान भाइयों, ये तो हुई बातें ड्रिप सिंचाई की, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की। और अब
2: किसान भाइयों, जैविक खेती सुदृढ़ खेती है। जैविक खेती अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, भूमि में जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके साथ हम गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करते हैं। जैविक खाद का हमें समुचित उपयोग किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हमें देख रेख करनी चाहिए, किस प्रकार ध्यान देने चाहिए, इन तमाम बातों पर आज जानकारी साझा करेंगे। अभिषेक पटेल, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि जैविक खाद क्या है।
3: जैविक खाद जो कि हमारा गोबर का फाड़ा हुआ बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए सर्वप्रथम इसको हम बनाते कैसे, इसको हम बता रहे हैं कि इसका एक पिट तैयार करना रहता है, 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, अच्छा। 1 मीटर गहरा।
2: अच्छा।
3: इसका पिट या तो आप प्लास्टिक बना सकते हैं या तो सीमेंटेड बना सकते हैं, उसको बना लीजिए। फिर इसमें आप एक लेयर, पतला लेयर, उसमें लगभग 3 से 4 mm मिट्टी डाल दीजिए। फिर उसके बाद फड़ा हुआ गोबर उसमें डालिए। गोबर डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि लाए डायरेक्ट डाल दीजिए, उसको लाइए एक जगह अलग से रखिए, 1-2 रोज के बाद उसको उसमें गड्ढे में डालिए। फिर उसके बाद आता है कछुआ, ट्राइकोडर्मा, तो उसको उसमें एक गड्ढे में लगभग 1 से 1.5 kg उसको कछुआ के डाला जाता है। उसके बाद आपका फड़ा हुआ किचन का सामान हुआ, सब्जी फल फूल या तो पुआल हुआ, ये सब कुछ डालिए। फिर गोबर डालिए, इसी तरीके तह बाई तह करते हुए गड्ढे को पूरी तरीके से भर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दीजिए, या तो भीगा हुआ बोरा या जूट का कुछ भी हो उसे ढक दीजिए।
2: अच्छा।
3: तो 2 से 3 मंथ के बाद केचुआ जो भी होता है उसके अंदर, वो धीरे धीरे खाते पचाते
2: अच्छा
3: एकदम इसको बर्मी कंपोस्ट जैसा बना देता है, जैसा कि चाय के पत्ती होता है वैसा भुरभुरा हो जाता है। तो उसके बाद आप छलनी से छान लीजिए, आपका तैयार हो गया है।
2: अच्छा।
3: जैविक हमारा खाद जो होता है ये तैयार होता है इस तरीके।
2: फिर इसका इस्तेमाल करते हैं।
3: हाँ, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप खेत में, हर 3 महीने में तैयार हो जाता है।
2: अच्छा। अच्छा, समुचित उपयोग की बात जहाँ तक आती है, किस प्रकार हमारे किसान भाइयों को इसका उपयोग करना चाहिए?
3: इसका उपयोग खेती में बहुत ज्यादा हर एक तरफ किया जा सकता है, जैसे आप फसल लगा रहे हैं उसमें कर सकते हैं, बागवानी में सबसे ज्यादा इसका उपयोग बागवानी नर्सरी में सबसे ज्यादा होता है।
2: अच्छा।
3: इसका उपयोग,
2: अच्छा,
3: नर्सरी में किसी भी नर्सरी को, उसको अगर नर्सरी लगा रहे हैं उसको जिंदा रखना चाह रहे हैं, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्चा हुआ, ये सब नर्सरी के जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें इसका आता है, बर्मी कंपोस्ट का।
2: अच्छा।
3: इसका अगर जितना मात्रा रहता है उतना अच्छा इसका जर्मिनेशन होता है, प्लस जब इसको लगाने के लिए कबारते हैं तो वो आसानी से कबर भी जाता है, नहीं तो मिट्टी रहता है, मिट्टी में कबरता नहीं, जब टूट जाता है कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है।
2: अच्छा, ये भी एक बात है।
3: ये भी।
2: और क्या क्या लाभ हमारे जैविक खेती से हमारे किसान भाई प्राप्त करते हैं?
3: जैविक खेती से लाभ किसान भाई, ये इसका तो एक बार जैसे गोबर खाद हुआ या तो बर्मी कंपोस्ट हुआ या तो करंज खली हुई, ये सब जो जितने भी जैविक हैं सभी का, जैसे अगर फील्ड में आप डाल रहे हैं तो इसका आप 1 साल डाल रहे हैं 2 से 3 साल इसका फायदा करते हैं, जबकि आप DAP यूरिया ये सब उपयोग करते हैं तो जब फसल है तभी काम करेगा, ये होता है। इसके साथ साथ इसके डालने से जो जल की धारण क्षमता होती है वो वृद्धि होती है, इसके साथ साथ जो
2: मैंने खेत में आपका नमी बना रहेगा
3: और जो कि धीरे धीरे देखा जाता है कि जमीन ज्यादातर ऊपर होते जा रहे हैं।
2: हाँ।
3: बहुत ज्यादा समस्या इसकी आ रही है, इसमें भी इसका काफी ज्यादा ये रोकथाम करता है।
2: अच्छा,
3: जैविक खेती से तो इससे किसान को फायदा है। अगर किसान डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो उनको थोड़ा बहुत घाटा सहना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे करके पूर्णतया लाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले ही बार में पूरी तरीके से हम बर्मी कंपोस्ट या इस पे जैविक खेती पर आधारित हो जाएं। पहले 75% जैविक, 25% इनऑर्गेनिक, फिर 50, फिर धीरे धीरे घटाते जाइए, इनऑर्गेनिक को हटाते जाइए।
2: अच्छा।
3: आ जाइए टोटली ऑर्गेनिक पे,
2: ऐसे होता है।
3: हाँ, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट वो करेंगे तो आपका उपज जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगा पहली ही बार में अगर करेंगे। इसको करने के लिए कम से कम 2 या 3 साल में करेंगे तो आसानी से आपका उपज भी ज्यादा नहीं घटेगा, जिससे कि आपको आर्थिक जो नुकसान होगा वो नहीं होगा, नहीं तो आप पहली ही बार में अप्लाई करेंगे तो उसमें आर्थिक नुकसान

0: की ज्यादा संभावना है।
1: अच्छा, जैसे ये तो अनाज वाली फसलों में लोग अधिक रासायनिक खाद उपयोग कर देते हैं, तो क्या कहाँ तक ये उचित है? क्या अनाज में जैविक खेती से ही अनाज की खेती की जा सकती?
0: अनाज में जैविक खेती किया जा सकता है। जो आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, ये सब इसी इनऑर्गेनिक का ही आ रहे हैं, नए नए बीमारी। जैविक खेती में क्या रहता है, पहले के जो पुराने जमाने में लोग रहते थे, 70, 80, 90 साल, 100, 100 साल तक जीते थे, पर आजकल 50 साल, 60 साल पूजना मुश्किल पड़ जा रहा है। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जिसका कोई निदान नहीं है। हमारे किसान, कृषि वैज्ञानिक जो बताते हैं कि ये दवा है, इसका जो कार्य क्षमता है 10 से 15 दिन में करने का, पर जो हमारे किसान भाई है वो लेके जाते हैं, भिंडी या बैंगन हुआ, ये सब में 8 डालें, फिर कल फसल तोड़े, फिर परसों डालें, और कंटिन्यूस डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं खा रहे हैं, वो तो कोई दूसरा खा रहा है, जबकि उसका बाया प्रोडक्ट कुछ भी बन के जो आ रहा है वो तो स्वयं भी खा रहे हो ना। तो उसमें एक बार खेत में पड़ गया तो उसका एक लेयर जो बनता है वो तो लेयर पड़ा ही रह गया। आप उसमें अगले साल धान या गेहूं लगाएंगे तो उसका तो उसमें जाएगा ही असर, तो उसको तो आप खाएं। तो इसी की वजह से है कि जो तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, जिसका अभी इलाज भी बहुत नहीं हो पा रहा है, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जमीन धीरे धीरे काफी ज्यादा ऊपर होती जा रही है, इसका सीधा प्रभाव जमीन को ज्यादातर ऊपर कर देता है। एक लेयर बन जाता है, लेयर जल्दी टूटता नहीं तो
1: कठोर हो जाता है।
0: कठोर हो जाता है।
1: अच्छा, तो उस स्थिति में फिर आप सिंचाई वगैरह में भी
0: हाँ,
1: दिक्कत नहीं
0: सिंचाई
1: होगी?
0: में दिक्कत होगा, फसल लगाएंगे वो उसका जर्मिनेशन में दिक्कत होता है, वो सही जर्मिन उपज में भी दिक्कत होता है। तब ये होता है कि किसान, जनरली जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि खाद हम कम दिए हैं, वो खाद के चक्कर में और ज्यादा खाद देते हैं, जबकि उसे कोई वो नहीं है, उसमें कमी कुछ है, लोग कुछ दे रहे हैं। किसान जैसे अपना आदमी अपना जैसे शरीर का जांच कराते हैं, वैसे किसान भाई तो पहले तो अपना मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी में कौन सी चीज की क्या कमी है उसको देखते हुए, अगर इनऑर्गेनिक में दे रहे हैं तो उसमें देखें क्या उसमें कमी है। पता चल रहा है कि उसमें कमी है जिंक की, आप उसको DAP यूरिया दे रहे हैं, तो आपको लगी है प्यास, आप उसको खाना खिला रहे हैं, तो वो कहाँ तक खाए। तो इसी प्रकार प्लांट भी है, प्लांट को जरूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट के, आप दे रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट, तो उसमें वो उसको प्रॉब्लम है। अगर मिट्टी का आप जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारे फील्ड में क्या चीज़ की कमी है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका फसल जो है अच्छा होगा, उपज भी अच्छा मिलेगा,
1: गुणवत्तापूर्ण भी
0: हाँ
1: होगा,
0: गुणवत्तापूर्ण भी रहेगा।
1: मतलब कोई हानि उससे नहीं
0: हाँ
1: पहुंचेगी।
0: हाँ
1: इसलिए
0: आप
1: मिट्टी जांच भी अति
0: हाँ
1: आवश्यक हो जाता है
0: बहुत
1: समय समय
0: जरूरी
1: पर।
0: है, समय समय पर कराना चाहिए मिट्टी की जांच।
1: लगभग कितने अंतराल पर मिट्टी जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है?
0: लगभग 2 से 3 साल में
1: एक
0: कराते
1: बार
0: रहिए,
1: करवाना
0: हाँ
1: लगता
0: करवा ही लेना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या कमी है। अनुसार आप अगर डालेंगे खाद या कुछ भी तो
1: है।
0: आपको बेनिफिट मिलेगा।
1: जी, आप थे अभिषेक पटेल जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और जैविक खेती से संबंधित, खाद का समुचित उपयोग से संबंधित आपने जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: आइए अब हम लोग बात करते हैं मिट्टी की जांच क्यों। हम लोग बार बार किसान भाइयों को जोर देते
1: जी
2: हैं
1: जी
2: कि,
1: बराबर सलाह देते हैं।
2: और सलाह भी देते रहते हैं कि आप हमेशा, आपने चूंकि ऐसा अक्सर देखा, जो हमारे पढ़े लिखे किसान भाई वह तो मिट्टी की जांच करा लेते हैं, लेकिन जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे किसान भाई जो खेती करते आ रहे हैं, आज भी वो मिट्टी की जांच कराना उचित नहीं मानते। वो समझते हैं कि पिछले वर्ष जो हमने हुआ था, इस बार इतना पैदा हुआ था, इस वर्ष कुछ कम हुआ, अगले साल थोड़ा सा बढ़ा तो अच्छा है, तो यह ख्याल दिल से निकाल दें। आप अपने खेतों से और भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी का अभाव है। आपको जब तक से यह पता नहीं होगा कि आपकी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, तब तक आप बेहतर पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर पैदावार जो चूँकि आप मेहनत करते हैं, आपका श्रम लगता है, आपकी पूंजी लगती है, आपका समय लगता है, तो उसका लाभ आप लें, इसके लिए आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं। पोषक तत्वों का अधिकांश भाग पौधे मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, और जब इन तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे खाद एवं उर्वरक डालकर पूरा करते हैं। सभी मिट्टियां एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी उर्वरता का अपना स्तर होता है तथा उनके गुण दोष अलग होते हैं, इसलिए फसल के साथ मिट्टी के अनुसार भी उर्वरक का उपयोग और उनकी मात्रा बदल सकती है। इसलिए किसान भाई, फसल लेने से पहले मिट्टी की जांच आवश्यक है।
1: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच दो समस्याओं

0: के समाधान के लिए की जाती है। प्रथम तो ये है कि फसल एवं वृक्षों के खाद की सिफारिश को देखते हुए, दूसरा आम्लिक या क्षारीय मिट्टी में सुधार के लिए, और मिट्टी की जांच से यह पता चल जाता है कि भूमि में कौन सा तत्व उचित अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है। यदि आप बिना मिट्टी जांच कराए खाद डालते हैं तो संभव है कि खेत में आवश्यकता से अधिक या कम खाद डाल दी जाए, और आवश्यकता से कम खाद डालने पर कम उपज मिलेगी तथा अधिक खाद डालने पर खाद का गलत उपयोग होगा और पैसा भी बेकार जाएगा। यह भी हो सकता है कि आप उन पोषक तत्वों को कम मात्रा में दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता अधिक है, और ऐसे तत्वों जिनकी आवश्यकता कम है तो आप अधिक मात्रा में उसे उपयोग कर दे रहे हैं। तो खाद व्यवहार के संतुलित एवं उचित मात्रा क्या हो इसकी जानकारी भी नहीं होने से आपकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाएगी,
1: और इसके सही जानकारी के लिए मिट्टी जांच जरूरी है। फलदार पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत नीचे तक जाती है, यह जानने के लिए जिस खेत में आप फल के पेड़ लगाना चाहते हैं उसमें पेड़ों की जड़ों को बढ़ने एवं पूर्ण रूप से भोजन पहुंचाने की क्षमता है या नहीं, मिट्टी की जांच जरूरी है।
0: और कार्यक्रम में हम बातें करते हैं, बकरी पालन बहुत उत्तम माध्यम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। प्रदीप जी,
1: ग्रामीणों का ये ATM भी है।
0: हाँ,
1: इसलिए बकरी पालन जो व्यवसाय है इसको अपना करके किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए कम पूंजी में कम जगह में इसे आसानी से किया जा सकता है। पहले शुरुआत छोटे पैमाने पर करें और जब आप इसकी खामियों को अच्छी तरह जान जाएं उसके बाद आप इसे बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, काफ़ी व्यावसायिक स्तर पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा किसान भी हैं हमारे जो प्रारंभ में स्टार्ट किए थे, एक दो बकरी से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी तकदीर बदली है।
0: आपकी खेती अगर टूट रही है, आप बहुत बुरी हालत में हैं, तो उस समय भी बकरियां काम दे जाती हैं। बकरियों के लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती है,
1: क्योंकि छोटे बकरी भी आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं, आसपास गांव घर में भी उपलब्ध होते हैं, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बकरी खरीदें, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं, आप 1,000-2,000 से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं
0: निश्चित।
1: तो उसके लिए घर का जूठन भी उनको काम आएगा, आपके खेत खलिहानों में वो चर करके भी बड़ी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा अगर देने वाली अगर कोई है तो वो बकरी ही है।
0: बिल्कुल सही।
1: और एक बकरी अपने जीवन काल में, कोई हालांकि उसकी निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि 8-10 बार वह
0: गाभिन होती है,
1: गर्भवती होती है, तो 8-10 बार वो बच्चों को जन्म देती है। और खासकर जो हमारा लोकल यहाँ का जो ब्रीड है, जो काफी मशहूर भी है, ब्लैक बंगाल की बकरी कम से कम 10-12 ब्यांत तक देती है बच्चे। और हर बार में देखिएगा, शुरू में एक बार में एक बच्चा, कभी कभी दो दो बच्चे, कभी कभी तीन तीन बच्चे, यहाँ तक कि 4-4 बच्चे एक एक बार में देती है।
0: वाह।
1: लेकिन दो का तो औसत अधिकतर बना रहा है।
0: अधिकतर बना है, मतलब एक बार में दो बच्चा तो देना है।
1: एक बार में दो बच्चा देना है, और इन लोगों का जो कार्यकाल होता है 6.5 महीने का होता है। ऐसे हम लोग 1 साल बोलते हैं, लेकिन अगर आप टाइम देखिएगा तो 13 महीने का समय लगता है। तो 13 महीने में आप दो बार, 1 साल 1 महीने में आप 2 बार इससे बच्चे प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है कि मृत्यु दर जो है बकरी पालन में, छोटे बच्चों में मृत्यु दर अधिक। कारण है कि जो ब्लैक बंगाल हमारी बकरी है उसमें दूध की मात्रा जो है, दूध जो देने की जो क्षमता है वो अन्य बकरियों से कम होती है। तो उसके लिए जो है कि जब आपका बच्चा छोटा है तो उस समय आपको 1 महीने जो है, जब तक से वो अपने ये पर चरने फिरने के काबिल नहीं बनता तब तक 1 महीने आपको देख रेख की आवश्यकता होती है। अगर उसको 15 दिन तक अगर आप माँ के दूध से अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो आप गाय का दूध भी उसके पिला के पाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं।
0: और कम पूंजी में ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत की जा सकती है किसान भाइयों। और रही बात रोग व्याधियों की, तो उसके लिए हमारे किसान भाई अपने पशु प्रखंड पदाधिकारी जो हैं पशुपालन उनसे संपर्क कर सकते हैं।
1: और गांव में जो पहले से बकरी पाल रहे हैं तो उनको खुद पता होता है कि बकरी

0: कौन सी बीमारी हो रही है तो उसका उपचार वो लोग करते हैं।
1: किसान भाइयों, इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
0: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम।

0: तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार।
1: आपको भी संतोष कुमार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रदीप जी।
0: अपने पर्यावरण को हमको बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, तो जितना भी आप केमिकल चीजों से दूर रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे
1: जी।
0: बुजुर्ग हुआ करते थे 100 साल जीते थे, उससे भी अधिक जीते थे, उसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि वो मिलावट के चीज़ों से परहेज करते थे, शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अभी धीरे धीरे चूंकि आधुनिक दौर आते गया, जमाना बदलते गया, लोगों के रहन सहन खान पान जो दिनचर्या है उसमें भी काफ़ी बदलाव
1: आ चुका,
0: तो इसी का जो दुष्परिणाम है कई तरह की समय से पहले बीमारियां, बच्चों का आँख खराब हो जाना
1: जी,
0: कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आदमी घिरा हुआ है, तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसका दोष किसी अन्य को न दें तो ज्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले
1: जब बात हो रही है प्राकृतिक की, तो आज जीवामृत की बात हम करेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा आज विषय चुना है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवामृत, आपने अच्छा विषय को चुना है। तो यह जो है जीवामृत बनाने की विधि क्या है और उसका उपयोग हमारे किसान भाई कैसे उसे अपने खेतों में करें?
1: जी बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई को हम यह भी बताते चलें कि हरित क्रांति के बाद ही भारतीय खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल करके रख दी है और आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे किसान भाई हम यह बताते चलें कि अगर हम जीवामृत वगैरह का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, तो हम फसल को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादित कर सकते हैं और मृदा को भी सुधार सकते हैं।
0: संतोष जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपने बात बताई, इन जो सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे किसान भाइयों के पास एकमात्र विकल्प है जैविक खेती को बढ़ावा देना, और यह समय की मांग भी है।
1: मांग भी है बिल्कुल।
0: और जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से तो सुरक्षा करता ही है और साथ ही साथ जो पौधे स्वस्थ बने रहें इसका भी वह इसमें मदद करता है। जीवामृत दो प्रकार के होते हैं।
1: अच्छा।
0: पहला तरल जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत। तरल जो जीवामृत है वह उसके बनाने की जो विधि है उसके लिए जो है आपको देसी गाय का 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, पुराना सड़ा हुआ गुड़ 1 किलोग्राम और किसी भी प्रकार की दाल का 1 किलो बेसन, जैसे मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, चना हो, कोई भी बेसन हो, आप उसका 1 किलो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलोग्राम, जिसे सजीव मिट्टी भी कहते हैं, अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी न मिले तो खेत की मिट्टी प्रयोग की जा सकती है जिसमें कीटनाशक न डाले गए हों, इसका बात का भी ध्यान रखना है। और एक जो बड़ा सा पात्र जिसे हम ड्रम कहते हैं, लगभग 200 लीटर
1: जी।
0: सभी को इकट्ठा करके सबसे पहले

0: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गोमूत्र, 1 किलोग्राम पुराना सड़ा हुआ गुड़, 4 लीटर गन्ने का रस, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी एवं 200 लीटर पानी को एक मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के ड्रम में डालकर किसी डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं, जिससे यह पूरी तरह से आपस में मिल जाए। अब इस मटके या ड्रम को ढककर छांव में रख दें। इस मिश्रण पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसका आप विशेष ख्याल रखें।
1: यह किसान भाइयों, और अगले दिन इस मिश्रण को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से हिलाएं। 6 से 7 दिनों तक इसी कार्य को आप करते रहें। लगभग 7 दिन के बाद जीवामृत उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जाता है, और यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में डालते हैं, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालते हैं, तो लगभग 50 लाख करोड़ जीवाणु इस पानी में डालते हैं, और जीवामृत बनते समय हर 20 मिनट में इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है। और जीवामृत हम 7 दिन तक किण्वन के लिए रखते हैं तो उनकी संख्या अरबों खरबों में हो जाती है, और जब हम जीवामृत भूमि में पानी के साथ डालते हैं तब भूमि में ये सूक्ष्म जीव अपने कार्य में लग जाते हैं तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।
0: अब हम बात करेंगे तरल जीवामृत को कैसे प्रयोग हम लोग करें।
1: जी,
0: तो तरल जो जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर बल्ब की सहायता से जीवामृत पानी में डालें। धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलाकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सकता है। किसान भाई इस तरल जीवामृत का फसलों पर छिड़काव भी कर सकते हैं। फलदार पेड़ों के लिए दोपहर 12 बजे के समय पेड़ों की जो छाया पड़ती है उस छाया के बाहर की कक्षा के पास 1 से 1.5 फुट पर चारों तरफ से नाली बनाकर प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में 2 बार पानी के साथ दें। जीवामृत छिड़कते समय भूमि में नमी होनी चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखें। जीवामृत का प्रयोग किसान भाई गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उड़द, कपास, सरसों, मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर आदि फसलों के साथ अन्य सभी प्रकार के फलदार पेड़ों में भी कर सकते हैं।
1: वाह। और घन जीवामृत की अगर हम बातें करें किसान भाइयों, तो घन जीवामृत बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है हम आपको बताते चलें। 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर, 5 लीटर देशी गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलोग्राम दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी, ये सब सामग्री एकत्रित करके सबसे पहले 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर लें आप, और उसमें 2 किलोग्राम गुड़ तथा 2 किलोग्राम दाल का बेसन और 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें, और इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा गोमूत्र डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर गूंथ लें ताकि उसका घन जीवामृत बन जाए। अब इस गीले घन जीवामृत को छांव में अच्छी तरह फैलाकर सुखा लें, और सूखने के बाद इसको लकड़ी से ठोक कर बारीक कर लें, और इसे बोरों से फिर इसे बोरों में भरकर छांव में रख दें। इस प्रकार बने घन जीवामृत को आप 6 महीने तक भंडारण भी कर सकते हैं।
0: तो घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको जरूरी है। तो घन जीवामृत को हम किसी भी समय भूमि में डाल सकते हैं। खेत की जुताई के बाद इसका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। अगर आप खेत की जुताई कर रहे हैं उस समय आप इसका प्रयोग करें। जब हम भूमि में इसे डालते हैं तो नमी मिलते ही घन जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष तोड़कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। किसी भी फसल की बुआई के समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम जैविक खाद और 20 किलोग्राम घन जीवामृत का प्रयोग करें। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके प्रयोग से आप रासायनिक खादों से भी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। बीज बोते समय बोने का जो औजार है उसमें दो नालियों

0: का बाउल लगाएं, एक बाउल से बीज बोएं और दूसरे बाउल से यह जैविक खाद और घन जीवामृत का मिश्रण डालें। आपके इलाके में बीज बोने की जो भी विधि हो उससे ही इन दोनों की बुआई करें।
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों, और ये तो बातें हुई प्रदीप जी आज हमारे किसान भाइयों के साथ जीवामृत की। और किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी, जिनसे आज विस्तृत बातें होगी गर्मा सब्जियों की खेती में देख रेख की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार किसान बंधुओं।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाई को बताया जाए कि गर्मा सब्जियां अभी जो जो लगा रहे हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं।
2: जैसा कि हमारे पलामू क्षेत्र में देखा गया है कि गर्मा के समय में किसान जो है मैक्सिमम किसान बृहद पैमाने पर लतर वर्गीय फसलों की खेती सब्जी के रूप में करते हैं, अब बहुत विगत वर्षों से और करते आ भी रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रभेद का उत्पादन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इन सब्जियों के उत्पादन में किन किन तकनीकी पहलुओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए उस पर मैं कुछ किसानों को अवगत कराना चाहूँगा। किसान बंधु जैसा जानते हैं कि हम सभी लोग जो लतर वर्गीय फसल की खेती करते हैं तो उनमें विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने जो प्रभेद का चुनाव है, जैसे यहाँ खीरा भी है, लौकी है, आपका झिंगी है, नेनुआ है, करेला है
1: जी,
2: बहुत सारा जो लतर वर्गीय जो है हमारे किसान कर रहे हैं। तो इसमें किसान को मैं बोलूँगा कि ये जो आप जो प्रभेद का चुनाव जो है अच्छे मतलब अच्छा करें और साथ साथ बीज उपचार करने के पश्चात ही तैयार खेत पर लगाएं। तो इस संबंध में मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जहाँ पर भी आप खेती के लिए सोचे हैं, तो जो किसान तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो बिजरा गिरा चुके होंगे जो पॉली बैग उग में, तो लोग तो कुछ है 15-20 दिन एक महीना आघात फसल जो पाएंगे तो उनको उत्पादन कम मिलने के पश्चात भी ज़्यादा उनको मुनाफा होगा
1: जी।
2: और वैसे किसान जो अभी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उनको जो है किसान जो है जो प्रभेद उन्हें उचित लगे चाहे बाजार में और जो लगाते आ रहे हैं, तो उसमें मेन ये है कि जो आप बीज ले आ रहे हैं तो बीज को पहले उपचारित करें
1: जी।
2: उपचारित करने के लिए जो दवा आप लोग सामान्य तौर पर कार्बेंडाजिम बेविस्टिन के नाम से जो जानते हैं हम लोग, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज इसको ले, और उसको पहले 1 किलो अगर बीज रहता है तो उसमें 2 ग्राम पाउडर डालना है।
1: अच्छा।
2: आप पाउडर से उसको उपचारित करने के बाद उसको ठंडे जगह पर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तत्पश्चात उसको जो है तैयार प्लॉट में जो आप प्लॉट जहाँ तैयार किए हैं उसको छोटा छोटा पिट बनाकर उसमें 4 से 5 बीज जो है एक पिट पर लगाएं, और ये जो बीज जो आप लगा रहे हैं तो बीज को लगाने के पश्चात उसको जो है और आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर आप उस बीज को जरा भुरभुरे गोबर के खाद से ही उसको ढके तो ज़्यादा अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा। ये वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, अन्य खादों के रूप में जैसे कि हम लोग फसल के रूप में 100-50 का जो हम लोग उपयोग करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, मतलब 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटास प्रति हेक्टेयर। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि एकड़ के दर से देखा जाए तो हमारा जो है 40 kg आपका ये आ जाता है नाइट्रोजन, जिसको हिंदी में हम लोग नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हम लोग डालते हैं, DAP के रूप में डालते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा ये जो है आपका 15 kg जो है आपका 20 kg फास्फोरस, 20 kg पोटास जो है प्रति एकड़ के दर से डालते हैं। इसको डालने के लिए भी आपका एक सावधानी ये बरतना है कि किसान बंधु जो है यूरिया खाद जो है जो नाइट्रोजन है उसकी पूरी मात्रा, जैसे हमने 100 kg बोला तो 100 kg को पूरी मात्रा को प्रति हेक्टेयर के दर से जो करते हैं तो इसको कम खेत में पहले डाल के अच्छा से मिलाने के पश्चात पीट बनाएं। अगर थोड़ा चाहते हैं कि नहीं क्वांटिटी में हमारे पास कम है तो उसको पीट में ही उपयोग करें, प्रति पीट जो है आप जो है उसका उपयोग करेंगे तो इससे आपका खाद का मात्रा भी कम लगेगा और किसान को वहाँ भी जो आप इनपुट के रूप में जो लागत लगाते हैं उसमें बचाव आएगा।
1: अच्छा।
2: उसके बाद है जैसे खाद को अच्छा डालने के बाद ये करने के बाद पौधे को जो है दूरी मेंटेन करना जरूरी है। दूरी मेंटेन करने के लिए मैं प्रायः किसानों को बोलता हूँ कि अगर आपका दूरी अच्छा रहेगा, जैसे कि अब लतर वर्गीय में अब कद्दू है, नेनुआ है, झिंगी है, तो लतर के बढ़ाव के अनुसार जैसे ज़्यादा बढ़ने वाला लतर है तो उसको 2 से 2.5 मीटर रखिए, कम बढ़ने वाला है तो 1 से 1.25 मीटर रखिए। तो लतर के बढ़ोतरी के अनुसार ही अपना जो है आप दूरी को निर्धारित करें। तो जैसे लौकी लगाते हैं तो लौकी में किसान बंधु भी क्या करते हैं कि बहुत नज़दीक लगाने से क्या होता है कि पौधे का बढ़वार अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है, जिसके चलते रोग व्याधि का आक्रमण ज़्यादा होने लगता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि लतर का बढ़ते हुए देखते हो, जैसे कि अब कोहरा है, लौकी है, तो इसको आपको लगाना है तो 2 से 2.5 मीटर पर लगाइए।

0: वहाँ है, करेला है, खीरा है, तो इस सबको एक मीटर से सवा मीटर की दूरी पर लगाइए। तो इस तरह आप लगाएंगे तो एक निर्धारित दूरी पर होने से पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और कम बीज में ज़्यादा एरिया कवरेज होगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद है कि जैसे लगाने के पश्चात बीमारी है और गर्मी क्रम में खास तौर पर यह देखा गया कि पानी की समस्या बहुत अहम हमारे पलामू क्षेत्र में है। तो वैसे केस में किसानों को बोलूँगा कि जगह का चयन जो आप करते हैं उसको ऐसे जगह पर करें जो कि नहर नादी चाहे नाला उला के बगल में हो, जिसका कि पटवन आप सही ढंग से सही समय पर कर सकें। अन्यथा ज़्यादा आप एरिया लगा दिए और लगाने के पश्चात पानी नहीं है तो उसका पौधे का कोई महत्व नहीं, ग्रोथ में नहीं मिलता है और अच्छा उत्पादन नहीं होता है। तो किसान जो है इन सब पहलुओं पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और साथ साथ में अगर किसी तरह का फफूंद आ जाता है, अगर कीड़ा का आक्रमण होता है, तो इसमें इमिडाक्लोरोपीड दवा जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर फफूंद नासी है तो जो कार्बिंडाजिम आपने उपचार करने में लगाया था उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसको छिड़काव करेंगे तो उससे आप निजात पा सकते हैं। हाँ, अगर पाउडरी मिल्ड्यू है, देखेंगे कि उजला उजला पाउडर लग जाता है चाहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम सल्फेक्स दवा का उपयोग करते हैं, उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से डालेंगे तो वो जो है उसका छिड़काव करें तो आपका फसल अच्छा रहेगा और ज्यादा इनकम होगा।
1: जी अच्छा, बात आती है चूंकि लत्तर वर्गीय सब्जियों की हो रही है तो मचान की बात आती है।
0: जी जी,
1: तो वो कितना कारगर साबित होता
0: है? मचान अति आवश्यक है। होता क्या है कि लत्तर वर्गीय फसल का बढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे पौधे में हवा का संचार और लोगों को आने जाने में लत्तर जो है टूटने का बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वैसे में अगर किसान जो किसान एक ओपन फील्ड में लगाए हुए हैं और एक जो है कि मचान के रूप में लगाए हैं, तो मचान वाले पर अगर चढ़ाते हैं तो उनका पौधे का विकास उचित होता है और फल तोड़ने के भी प्रक्रिया में उनको बहुत सहूलियत होती है, जिससे कि अच्छा फल का जो है प्रॉपर वे में वो तोड़कर और बाजार भेज सकते हैं। और ये जो जमीन समतल जमीन पर ओपन कंडीशन में ऐसी लगा हुआ है तो उसमें घुसने और आने जाने से लत्तर बर्बाद ज़्यादा होता है और फसल का जो विकास में बाधा आने से पौधा उपज जो है थोड़ा कम मिलता है।
1: इन सभी पहलुओं पर आपने विस्तृत जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान जो पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाड़ी गांव से आते हैं और ये किसान भाई ने गर्मा सब्जियों की खेती कर रखी है, गर्मा अन्य जो फसलें हैं अनाज फसलें उसकी भी खेती कर रखी है, इसके साथ ही साथ ये बागवानी पर इनका विशेष बल रहता है। और आप हैं अजय कुमार मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अभी आप गर्मा में किन किन सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
2: नमस्कार, मैं अजय कुमार मेहता ग्राम हिसरा बरवाड़ी पाटन से हैं। अभी गर्मा फसल में हम लोग का कद्दू है, करेली, झींगी, नेनुआ, खीरा, मिर्चा, सभी तरह का गर्मा फसल अभी लगा हुआ है।
1: अच्छा।
2: प्याज अभी और बरसाती फसल का भी तैयारी हो रहा है।
1: अच्छा, बरसाती की तैयारी अभी से शुरू कर दी?
2: जी जी, अब तैयारी हो गया।
1: उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं?
2: जिससे खेत को जुताई हो गया, खेत एकदम सूख के तैयार है, उसके बाद हम लोग मेड़ बना देंगे, मेड़ में पानी डालेंगे, इसके बाद बीज को रोपाई करेंगे।
1: मेरा खेत किस प्रकार होना चाहिए बरसात की खेती के लिए?
2: खेत हमारे ढालू नुमा होना चाहिए, जिसमें पानी की जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब अधिक बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है जिसके पौधा का नुकसान हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ ढालू जमीन की ज़रूरत है गर्मा बरसाती साग सब्जी लगाने के लिए।
1: और बरसाती साग सब्जियों में किसके किसके विचार आपने किए हैं सब्जियों की?
2: जिससे बरसाती में भी हो गया कद्दू हो गया, करेली हो गया, नेनुआ हो गया, खीरा हो गया, ये सब अभी बरसाती लगेंगे। जो अब वो हम लोग ई पर लगाते हैं, किसी भी पौधा को काट करके उसको झाल बना देते हैं, उसी पर उचड़ करके ऊपर फलेगा। गर्मा फसल में जो भी हम लोग उत्पादन होता है तो ज़मीन में भी फला रहता है, इसलिए कि वो ऊपर में जाएगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसके कारण वो फल में नुकसान होने लगता है। लेकिन बरसाती फसल में वो नहीं है, सब जो भी होगा उसको हम लोग बांस का चाहे बांस तार में बांध कर उस पर हम लोग लतर को चढ़ा करके बरसाती फल को हम लोग लेते हैं।
1: अच्छा, और अब हम बागवानी की ओर लौटते हैं। बागवानी में अभी आपने क्या क्या लगा रखा है?
2: जैसे अभी आम हम लोग लगाए हैं, अमरूद है, और अभी फल भी आ चुका है, आम में बहुत अच्छा फल है।
1: अच्छा। और आम की देख रेख कैसे कर रहे हैं अभी?
2: आम जैसे हम लोग का मंजर आया उसके बाद हम लोग छिड़काव किए कीटनाशक का, और इसके बाद में हम लोग उसका 2 बार किए, इसके बाद फल आना स्टार्ट हो गया तो उसको हम लोग छोड़ दिए, ज़्यादा दवा का यूज हम लोग नहीं किए।
1: कौन कौन से किस्म के आम हैं?
2: वो हम लोग इधर तो लोकल में हम लोग लांगड़ा और दशहरी के नाम से ही जाने जाते।

0: जाते हैं, और मैंने ज़्यादा लंगड़ा का फल है।
1: और उसी को आपने लगाया है।
0: जी जी
1: और खासकर खाद उर्वरक का व्यवहार क्या कर रहे हैं अभी आप?
0: खाद में हम लोग गोबर खाद का यूज कर रहे हैं, पेड़ के नज़दीक भी, चाहे हम लोग साग सब्जी भी लगाते हैं तो बीज जहाँ लगाते हैं वहाँ हम लोग खाद पहले डाल देते हैं, गोबर खाद मिला मिला कर करके, मिट्टी और गोबर खाद मिला करके इसके बाद बीज को डालेंगे वहाँ, और इससे पौधा भी जर्मिनेशन होने में भी बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है, क्योंकि मिट्टी वहाँ एकदम भुरभुरा हो जाता है, हार्ड मिट्टी नहीं रहता है, और जर्मिनेशन होने में पौधा का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहिए, चाहे केचुआ खाद कहिए, चाहे घरेलू खाद, उसी का यूज कर रहे हैं।
1: और आम के अतिरिक्त और कौन से पौधे हैं?
0: आम के अतिरिक्त तो ऐसे फिर तो काम के पौधे हैं, यही हैं, नींबू है, फिर अनार का भी कुछ पौधे हैं, और आम है ही, और केला था, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इसके चलते नहीं हो पा रहा है।
1: केला की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी आप?
0: केला जैसे हम लोग लगा देते हैं, इसके बाद में फिर पानी उसके मेड़ के बना करके नज़दीक से पानी उसको दिया जा देते हैं, और 8 दिन 10 दिन पर पानी, बरसात में तो खैर पानी नहीं लेता है, लेकिन गर्मी में 8 से 10 दिन के अंदर पानी 2 बार देना ही पड़ता है।
1: और अभी गर्मी के दिन में?
0: गर्मी के दिन में 8 दिन में 2 बार पानी देते हैं उसमें। गर्मी के दिन में जैसे हम लोग जैसे नींबू का पौधा लगाए, अमरूद का लगाए, केला है, आम का है, उसमें हम लोग पानी मेढ़ बना देते हैं, और मेढ़ से पानी उसके अंदर हम लोग डालते रहते हैं, 8 दिन में 2 बार हम लोग पानी का देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी प्लमों में पड़ रहा है, जिसके चलते फसल का नुकसान होने लगता है।
1: केले के हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
0: केला का उत्पादन अधिक से अधिक करना है तो 10 फीट के अंदर दूरी 10-10 फीट पर लगाएं, उसमें कोड़ाई उड़ाई करके बर्मी कंपोस्ट खाद जहाँ से भी है, कहीं से भी उपलब्ध, चाहे अपने घर में है, हम लोग उपलब्ध करके बीच में डाल डाल करके उसको हम लोग करें, और अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अधिक केला पलामू में हम लोग का लोकल केला का मांग होता है सब्जी के लिए, जो कि बहुत अच्छा तरह से पैसा हम लोग को मिलता है, और इसमें किसान लगाते हैं और बहुत अच्छे तरह से लाभ भी ले रहे हैं।
1: आपने जो भी लगाया है सब सब्जी फसल की?
0: हाँ, हम जो भी लगाए हैं सब सब्जी फसल की।
1: कितने थान होगा केला
0: अभी? कम से कम 25 से 30 थान केला मेरा है।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं?
0: हाँ, अभी गर्मी में तो कुछ कुछ कम है, लेकिन ये गर्मी के पहले ज़्यादा था, और अभी 5 से 7 पौधा तैयार है मेरा।
1: अच्छा
0: जी,
1: जो मैंने फल दे रहा है?
0: फल दे रहा है।
1: अच्छा अच्छा, और अनाज वाली फसलों पर हम आते हैं, गर्मा अनाज की फसलें, उसमें अभी कौन कौन सी मुख्य फसलें लगी हुई हैं खेतों में?
0: अभी गर्मा में तो हम लोग को मूंग लगा हुआ है, सबसे पहला चीज मूंग लग गया है। मूंग हम लोग के कम से कम 1 माह के अंदर फल आना स्टार्ट हो जाएगा। और गेहूं था तो गेहूं अब तो गर्मा फसल में कट चुका, और इसके बाद में मूंग ही मुख्य अभी हम लोग का खेती हुआ है।
1: अच्छा, मूंग की खेती किस प्रकार हमारे ग्रामीण बंधु करें कि जिससे कि मतलब अधिक मुनाफा हो, और कीड़ों की देखरेख किस प्रकार करें?
0: हाँ, हम लोग जिसे गेहूं की कटाई होता है, चाहे खेत खाली जो खेत है उसको अच्छी तरह से जुताई हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद सबसे पहले पटवन करते हैं, पटाने के बाद उसमें जुताई कर लेते हैं, और जुताई करने के बाद हम लोग मूंग लगा देते हैं। मूंग लगा जिसे पटाई हम लोग किए तो पटाने के बाद जो है से 10 से 15 दिन के 20 दिन के बाद फिर पानी हम उसको देंगे, जब पौधा 2 पत्ता 3 पत्ता का हो जाता है तो 15 से 20 दिन का कि में हम लोग पानी उसमें फिर डालेंगे, और अच्छे उत्पादन के लिए उसमें हम लोग अब तो भर में हम लोग के जो भी खेत रहता है से सब गोबर खाद से भरा हुआ रहता है, किसी तरह खाद का यूज हम लोग नहीं करते हैं मूंग में, और
1: मतलब कुल मिलाकर जैविक खेती की ओर
0: जैविक खेती
1: ध्यान दिया जा रहा है।
0: जी
1: जी, और अब इसकी मांग भी है, चूँकि जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जल धारण क्षमता बनी रहती है, गुणवत्तापूर्ण फसल आप उत्पादन प्राप्त करते हैं।
0: जी,
1: और मूंग के अलावा और कौन से दलहनी फसल है?
0: मूंग के अलावा अभी राहर कट चुका है।
1: अच्छा,
0: राहर था।
1: कैसा उत्पादन हुआ?
0: ठीक ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है मेरे यहाँ नीलगाय सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी है।

0: फल आता है सबसे अधिक फल को नुकसान कर देता है, काट सब चर जा रहा है।
1: मसूर,
0: मसूर का उत्पादन ठीक था, मसूर में उतना नुकसान नहीं करता है,
1: है ना,
0: मसूर अच्छा था।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घड़ी इशारा कर रही है समय समाप्त होने को है,
1: तो चलने से
2: पहले हम लोग लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:53 हुए हैं। 6:55 पर हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां सुनेंगे 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आज कल बस कुछ ही पलों में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, राजस्व में वृद्धि और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश। राज्य के महाधिवक्ता रोहिताश्री रॉय ने विधि पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ। सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर। उच्च स्तरीय बैठक में 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और रांची में डोरंड कप की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को करेंगे रांची लीग चरण का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 33 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इन पार्कों का चयन राज्यों के प्रदर्शन और पहल के आधार पर चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उत्पाद विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति पूरी करने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर ठोस योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। राज्य सरकार ने सरकारी न्यायालय प्रकरणों के समग्र और प्रभावी डिजिटल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज विधि पोर्टल 2

0: 2.0 का शुभारंभ किया। महाधिवक्ता रोहित आशय रॉय ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल राज्य में मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पोर्टल आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, दक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया है। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में एम्बुलेंस खरीद, संचालन और निविदा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर श्री सिंह ने अधिकारियों को नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि इन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जमाल अहमद को जल्द पदमुक्त करने की भी मांग की। बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले के मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 27 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगा। यह मामला बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज उपराजधानी दुमका में संताल परगना प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था तथा श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि श्रावणी मेले को देखते हुए देवघर और दुमका में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
1: 2 महीना तक मेला चलेगी और इसमें काफी भीड़ होगी, तो अपराध नियंत्रण की भी आवश्यकता है। सो जो भी आवश्यकता है दोनों साधन का और बल का, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं। श्रद्धालुओं पर बिल्कुल नजर रखी जाएगी ताकि हम लोगों का कोई घटना ना घट पाए।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रामगढ़ जिले को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मातृत्व, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जिले को यह सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है।
2: सुरक्षित मातृत्व अभियान में जिला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड से सराहा गया है। इसमें विभिन्न इंडिकेटर होते हैं जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके गर्भवती होने से लेकर के डिलीवरी होने तक उनके ANC होना, उनका टीकाकरण होना, इन पूरी प्रक्रियाओं में हम लोगों ने टाइम टाइम पे अलग अलग इंडिकेटर्स में फोकस किया है। इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी इस पे कार्य हुए हैं।
0: गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज सिद्धो कानो कृषि और वनोपज जिला सहकारी संघ की वार्षिक बैठक हुई। बैठक में जिला वन पदाधिकारी मनीष दुबे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को अधिक से अधिक वनोपज का लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
3: ये वाशी का डिविजन है जहाँ पे हम लोग पिछले साल जो भी चीजें हम लोगों ने किया है यहाँ पे

0: जो हमारे हितधारी हैं श्री कुंडस उनके समक्ष हम अभी बातें रखते हैं। आगे आने वाले समय में जो पिछले आयु वाला जो साल है हम लोग किन किन मुख्य बातों पर ध्यान रखेंगे, बहुत से सुझाव इसमें आए उसे भी हम लोगों ने नोट किया है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहली बार आयोजित डोरंड कप को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्टेडियम में रंग रोगन और दर्शकों के बैठने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर रांची के एसडीएम कुमार रजत और यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने आज स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिस जवान मुस्तैद रहेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंड कप के रांची संस्करण का उद्घाटन 26 जुलाई को करेंगे। मौसम। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 30 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य के दक्षिण पूर्वी उत्तरी मध्य और निकटवर्ती पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, राजस्व में वृद्धि और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश। राज्य के महाधिवक्ता रोहित आशीर रॉय ने विधि पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ। सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर। उच्च स्तरीय बैठक में 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और रांची में डोरंड कप की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को करेंगे रांची लीग संस्करण का उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: चतरा के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र दांगी ने अपनी मेहनत और वैज्ञानिक सोच से ICR द्वारा अनुशंसित धान की किस्म CR320 का प्रयोग कर खुद के साथ सैकड़ों किसानों की भी किस्मत बदलने का काम किया है। बीज निर्यातक किसान के तौर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुके किसान वीरेंद्र ने बताया कि
2: जब से कृषि विभाग के पदाधिकारियों से जुड़ा हूँ तब से प्रेरित किया गया कि आप अपने मिट्टी में बीज उत्पादन करें। ICR चावल अनुसंधान केंद्र का यह CR320 है जो उत्तम किस्म के बीज है और उसी बीज को ज़्यादा प्रचार प्रसार मैंने किया है। अपने जिला में 100 किसान को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पिछले साल बंटवाया था। इसी के उपलक्ष्य में विस्तार कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे मतलब यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI में चतरा जिले ने सुधार करते हुए विशेष प्रयास की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक में चतरा जिले को 256वां रैंक प्राप्त हुआ है। इधर एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि अधिकारियों की सरकार चल रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि
3: पार्टी के संदर्भ में और पार्टी के जो मेरा वैश्विक दायित्व है कि BLM जो पार्टी का बनना चाहिए वेस्टेड पार्टी के रूप में राष्ट्रीय पार्टी को प्राप्त है और रीजनल के रूप में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय को प्राप्त है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि एकदम बूथ लेवल पर हम अपना एजेंट तैयार करें, अपना प्रतिनिधि तैयार करें।
1: 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 1970 और 80 के दशक तक

0: चतरा जिला अपने घने जंगलों और बाघों की मौजूदगी को लेकर भी चर्चित रहा है। चतरा के जंगल सीधे तौर पर पलामू टाइगर रिजर्व के बफर जोन और कॉरिडोर के तौर पर जुड़े हुए हैं। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के जिला पदाधिकारी मुकेश कुमार ने इस पर बातचीत के दौरान कहा कि
1: ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो सिक्स साइकिल है उसका रिजल्ट जो 2026 में पब्लिश किया जाना था, इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अंतर्गत जो सर्वेक्षण का काम चल रहा था, इसमें चतरा में भी काम चल रहा है। जो उसके अंदर फेज वन का सर्वे था वो कंप्लीट करा लिया गया था, लेकिन कुछ सबमिट्स में पुनः सर्वे करवाने का जो हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें काम अभी चल रहा है। कुछ जो स्पॉट्स है वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए जाने हैं फिर से। चतरा का जंगल जो है झारखंड में टाइगर्स के कॉरिडोर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलामू टाइगर रिजर्व से जो कॉरिडोर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ती है वो चतरा से होकर ही जाता है, इसलिए यहाँ के जंगल इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने लोकसभा में केंद्र सरकार से जिले के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अलग समर्पित कोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना सर्वोपरि है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: Radio Ayumten Sanam Haga Undok Misiko Tisinge Adiwasi Ho Akara Kurudurure Tiba Akanaling Aling Soni Kumari Undok Lalita Deogam Aling Pete Sabinko Ikir Jibonte Ibil Sibil Joar
1: Joar ke Sabinko
0: Asra Mina Chi Sabinko Tiki Mina Abue Alingo Tiki Mina
2: आप रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुन रहे थे। प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग के आज के इस खूबसूरत पल को हमने सजाया फिल्म बेशरम के गाने से। अभी आपने सुना दिल का जो हाल है इस गाने को श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में, राजीव बर्नवाल के बोल थे जतिन ललित के संग।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम उड़ान।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम

छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स
या हेल्थ केयर में MBA जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं, जैसे कि बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। बी फार्मा स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए एम फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का फार्म डी पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक BA, MA, BSc, MSc कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय MPhil एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो MBBS के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार MBBS नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक BA, MA, BSc, MSc कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय MPhil एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो MBBS के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार MBBS नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं।

0: और एएच पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं, और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं, और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की MBBS के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण के थे। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।

किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की

रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी

0: संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्तापक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को है। आइए पेश है, हम लेकर हाजिर है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना फिल्म कुली के इस गाने को किशोर कुमार, शब्बीर कुमार और राधा पौडवाल की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के बोलते। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रोटी के इस गाने को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के बोल।

आपने सुना शब्बीर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कुली के इस गाने को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, और अब आइए हम चलते हैं कवाली महफिल नगमों के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में, जहां जुड़ते हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में। रात के 8:30 हो चुके हैं। महफिल कवाली नगमों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सुनते हैं इस

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत कार्यक्रम कवाली नगमों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 8:45 पर हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर हम सुनेंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा जिसमें आप सुनेंगे आज के फनकार। रात्रि 10 बजे लेकर हाजिर होंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपने स्टूडियो से। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार और अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। और श्रोताओं, 8:45

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे।

जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने

0: fervor. In the holy city of Puri in Odisha today, millions of devotees witnessed the sacred return journey of the sibling deities from the Sri Gundicha temple to the Sri Jagannath temple amid elaborate security arrangements. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखना अंदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सैनियम ने चीन में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज एक बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने की बात की गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई और बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी गई। जराए ने आकाशवाणी की खबरों के शोबे को बताया कि मुजवजा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैसेज के जरिए वजीर आजम मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वजीर आजम ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये एनटीए की मुकम्मल सफाई का एक हिस्सा है जो पेपर लीक के मामलों में तनाजे का शिकार रही है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इम्तिहानात में धांधलियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए अहम इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन इस मामले पर पार्लियामानी बहस में रखना अंदाजी करती है तो उसे मुल्क के नौजवानों के गुस्से का सामना करना होगा। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीजेपी वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात से मुताल्लिक सीजेपी के मुतालबात को इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन अहम मुतालबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को खत्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमको सुनी, बातों सुहा

0: बिल्कुल वातावरण में हूँ और कई दृष्टि से उन सारी बातों को हर तरीके से चर्चा हूँ।
1: हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे उस वीडियो को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने दावा किया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने जारी मुजाहिरों को खत्म करने के लिए उन्हें कार्रवाई करने की हिदायत दी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि ये वीडियो जाली और AI की मदद से बनाया गया है। यूनिट ने मजीद कहा कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। PIB ने लोगों से अपील की है कि वो मुसद्दिका मालूमात के लिए सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर ही इन्हिसार करें। इख्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बलारी गुंटकल सेक्शन की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की मंजूरी दी है जिस पर कुल 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तामीर से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 46 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान कनेक्टिविटी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भाव्य रसायन स्कीम की काबीना की जानिब से मंजूरी की भी इत्तला दी जिसके तहत मुल्क में 3 मखसूस केमिकल्स पार्क्स कायम किए जाएंगे।
2: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: भाव्य रसायन स्कीम पर 3,030 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस स्कीम पर 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल की मुद्दत के लिए अमल किया जाएगा। जनाब वैष्णो ने बताया कि मरकज हर पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया कराएगा। ये 1,000 करोड़ रुपए मुतालिका रियासती सरकार की जानिब से 500 करोड़ रुपए की कम अज कम रकम लगाए जाने की सूरत में मुहैया कराए जाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामलों पर आज लगातार 5वें दिन शोरगुल के बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आज लगातार 5वें दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के बाद रखना पड़ा। इसके साथ ही इजलास का पहला हफ्ता अपने अख्ताम को पहुंचा और कोई खास काम इस दौरान नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। शोरगुल के दौरान दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज कौमी ताजीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से आयद मुख्तलिफ शरायत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदर नशीं और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अराकीन दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रखना अंदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलिकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारिस्त में रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकतदारी में पेशरफ्त के मामले में समर आवर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और तिजारत सरमायाकारी साफ तवानाई कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज्म की तौसीख की। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत एक खुले महफूज काबिले भरोसा और जिम्मेदार इंटरनेट को सभी इस्तेमाल कुनिंदगान बिलखसूस बच्चों के लिए यकीनी बनाने

0: के तई पुर अजम है। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलात को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदाम किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझ कर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसां रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आजादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। शदीद बारिश ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आज शुमाली गुजरात में शदीद बारिश हुई। पाटन जिले के राधनपुर में 9 इंच से ज्यादा जबकि संतलपुर में भी 9 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी जुनूबी गुजरात में सैलाब की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: गुजरात के सैलाब से मुतासर अजला नौसारी सूरत और वलसार में राहत और बचाव का काम जारी है। नौसारी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ फौज और मकामी गोताखोरों ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में सैलाब जदा इलाके से आज 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अहमदाबाद में वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल के साथ एक आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया और अम्बली और घुमा रिहायशी सोसाइटियों में भरे पानी को जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत जारी की। बिलमोरा रेल सेक्शन के रोड और विरंगम स्टेशनों पर पानी भर जाने से मगरबी रेलवे की खिदमात आज भी शदीद तौर पर मुतासर हुई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज मुतद्दिद रेलगाड़ियों को मनसूख करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने कल भी पूरी रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है और 7 अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: आंध्र प्रदेश के आबपाशी महकमे ने कहा है कि एलनीनो असर की वजह से रियासत में बारिश में काफी कमी आई है जिससे कृष्णा नदी में आने वाले पानी का बहाव कम हो गया है। विजयवाड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश आबपाशी महकमे के इंजीनियर इन चीफ के नरसिम्हा मूर्ति ने कहा कि रियासत में 51% कम बारिश दर्ज की गई है जबकि कृष्णा डेल्टा में मामूल से 49% कम बारिश का इंदराज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में आज दोपहर उदयपुर किल्लर रोड पर काडू नाला के पास पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की जद में आकर एक गाड़ी दब गई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन मोहतरमा किरण भड़ाना ने बताया कि महलूकीन की शिनाख्त का अमल जारी है और बाजाबता तस्दीक के बाद तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। शूटिंग में भारत की सैनियम ने चीन में ISSF आलमी कप में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। 22 बरस की निशानेबाज सैनियम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैनुल अक्वामी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نٹراج نے ہیٹس کے دوران

0: 25 सेकंड और 52 मिली सेकंड की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे 16 तैराकों में 14वां मुकाम हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले आज रात होंगे। इससे पहले भारत के रवि वीरा वेंकट बुडगीना और अली इमाम मर्दों के S13 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा तैराकी मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज़ किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसवदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के वफ से मुलाकात की। इकतसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

0: बताओ।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए। क्रांति

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चलीं। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नेहा शर्मा। हर इंसान का किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है। उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा के इस खूबसूरत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहे हमारे साथ रजनीगंधा के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। हम लेकर हाजिर हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म के गाने को सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में हैरी, जयराज के संगीत, समीर के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म। फिलहाल के इस गाने को आशा भोसले की आवाज़ में अनु मलिक के संगीत हैं गुलजार के बोल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म है ये मोहब्बत है कि इस गाने को सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में। और अब आइए सुनते हैं फिल्म दीवानापन के इस गाने को शान और सुनिधि चौहान की आवाज में। समीर के बोल हैं, आदेश श्रीवास्तव के संगीत।

फिल्म दीवानापन के इस गाने को श्रोताओं आपने सुना सोनू निगम शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, समीर के बोलते आदेश श्रीवास्तव के संगीत, और अब आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह और वसुंधरा दास की आवाज़ में अनु मल्ली के संगीत, गुलजार के बोले, फिल्म का नाम है आशिक।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। भी आपने सुना फिर कसूर के गाने को अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में, समीर के बोल थे, नदीम श्रवण के संगीत और भाई सुनते हैं। ये मोहब्बत है फिल्म के गाने को सुधा मुग्धल और समादर की देव आवाज़ में, देव कोहली के बोल हैं, आनंद राज अनंत के संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म जुदाई के गाने को अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब आइए सुनते हैं फिल्म दिल दिया आर या प्यार के इस गाने को आशा भोसले और सुदेश भोसले की आवाज़ में, माया गोविंद के बोल हैं और बिजू शाह के संगीत। और इसी गाने के साथ हमें दीजिए रजनीगंधा कार्यक्रम से इजाज़त। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।